ये आकाशवाणी लेह की आवाज़ है। सुबह के 7:32 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए डॉक्टर राहुल मिश्रा से प्रोग्राम रोशनी।

दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब ए गम गुजार के। फैज़ अहमद फैज़ की बहुत मशहूर गज़ल का यह मतला यानी शेर मोहब्बत के शब्द को बताता है। मोहब्बत मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग अरबी फारसी के साथ ही उर्दू की शेर व शायरी में खूब होता है। प्रेम के भाव को बताने के लिए यह शब्द बहुत प्रचलित है। आम बोलचाल की भाषा में भी मोहब्बत शब्द का प्रयोग खूब होता है। इस शब्द के प्रयोग के साथ कुछ चीज़ें हमेशा के लिए जुड़ गई हैं। मोहब्बत शब्द का प्रयोग करते ही सारा ध्यान लौकिक या सांसारिक प्रेम की तरफ चला जाता है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध को यह शब्द बताने लगता है। लेकिन मोहब्बत शब्द का केवल एक यही अर्थ नहीं होता। फैज़ अहमद फैज़ के लिखे शेर को अगर देखें तो वहाँ पर हमें सीधे सीधे प्रेम का भाव दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रंग छिपा हुआ है। अरबी और फारसी से जो परंपरा उर्दू में आई और साथ ही सूफियों की विचारधारा का जो विस्तार हुआ, उसमें मोहब्बत शब्द का बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। जिस तरह सामने दिखने वाली साधारण सी चीज़ों के पीछे गहरे रहस्य छिपे होते हैं, ठीक उसी तरह सूफी संतों की वाणी में भी सामने दिखने या बताई जाने वाली बातों के पीछे गहरे अर्थ छिपे होते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के शेर में दोनों जहान यानी यह लोक और परलोक दोनों ही आ जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य अपने ईश्वर की आराधना में, अपने आराध्य देवता के प्रेम में जीवन बिताते हुए इस लोक को छोड़ता है और परलोक में पहुंचता है, पर उसकी भक्ति में कमी रह जाने पर उसे ईश्वर का प्रेम हासिल नहीं हो पाता। वह इस लोक में जैसे दुखों की रात गुजार कर चला जाता है। सूफी संतों के लिए मोहब्बत का सांसारिक रूप केवल माध्यम है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच मोहब्बत की बातें सामने देखने पर तो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक अर्थ अलग है। प्रकृति और पुरुष का चित्रण यहाँ आत्मा और परमात्मा के रूप में है, आराध्य और आराधक के रूप में है। आत्मा का परमात्मा से मिलन जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। यह मिलन आसान नहीं होता, इसमें विरह और वियोग की बहुत कष्टदायी स्थितियां होती हैं। सूफी संतों की वाणियों में, कव्वालियों और गजलों में यह भाव दिखता है। एक बहुत नामचीन सूफी संत हुए हैं बाबा शेख फरीद। मोहब्बत के संदेश के लिए बाबा फरीद की बाणी का उदाहरण दिया जा सकता है। बाबा फरीद की बाणी मुख्य रूप से मोहब्बत की बाणी है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सांसारिक प्रेम संबंधों का रूप हो सकता है, लेकिन संतों के लिए यह भक्ति का एक स्वरूप है। वे लौकिक प्रेम के वर्णन के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की बात करते हैं। वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। आत्मा के परमात्मा से बिछड़ने पर वियोग की स्थिति बनती है। यह वियोग ऊपरी तौर पर तो सांसारिक दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में यह आध्यात्मिक है। यह दुनियावी कामों से अलग है। इसमें वासना नहीं है, इसमें भौतिक लोभ नहीं है, इसमें त्याग है, समर्पण है, भावना का जुड़ाव है और पवित्रता है। मोहब्बत को दुनियावी संबंधों में भी देखा जा सकता है और आध्यात्मिकता के पवित्र विचार में भी देखा जा सकता है। अंतर केवल देखने की नज़र का होता है। माता पिता की अपने बच्चे के लिए भावना भी मोहब्बत होती है। दो

दोस्तों के बीच भी मोहब्बत होती है। हर जगह वासना या दुनियावी संबंध ही मोहब्बत में नहीं होते। इसमें देखने का नजरिया बहुत मायने रखता है। हम मोहब्बत को आध्यात्मिकता की नज़र से देखकर अपनी भक्ति भावना का माध्यम भी बना सकते हैं और अपने प्रेम की भावना का माध्यम भी बना सकते हैं।

अभी आप डॉक्टर राहुल मिश्रा से प्रोग्राम रोशनी सुन रहे थे। गजा आकाशवाणी लेने चुनजिकुमचुन कासे दिरिंग मेडिक्रम को निस्कोर सनाजात इन डिग्रम तंगपेना दक्षा तो छुजोत अल्दुन तंग कर्मा जिपचुका तत्पन अंशन डिग्रम संचस लफलिन दिरिंग डिग्रम बेना स्तंदिन शराब तंग इशे लामे फुलकने सुंगुर मोहम्मद हुसैन तंग छोपाने फुलकने नाति शरीफ यासिंग जुपेका मोहम्मद शेफी जिले तंग उटुब डोल में फुलकने छोसलो सनाजादेन आकाशवाणी दिल्ली ने घेरे का समाचार प्रभाग ज्ञातंस कर्मा चौहे का मॉर्निंग न्यूज ज्ञातं फेरे का गैलरस भगुला रिन पोछे स्कूचे सतनाम डिग्रम संचस लफोलिन डिग्रम फुलखन गेन तुफसन पालतन यहाँ तेस्तिंग ने श्री नूरपुथंग नवं रिंचन सलखने लोरियंग सनाचारेन गुई का लाथक सना नसुल गुदंग कर्मा श्री का फुंसो दोचे सलखने लोरिक सनाचारेन गुदंग फेने चुतो चु सुपा फिल्म लोरिक संचस लफोलिन चुनिंग इमेज तो चुंगे सुपा एफ एम गोल्ड दिल्ली डिग्रम गुन सनाचारेन इमेज तो चुंगे सुका फिल्म लोरिक चुंगिस तंग फेरे का एनसीईआरटी चिंतक जतखने उमंग डिग्रे में खाक चिकतों सुम गया चौहा पा सना चादेन आकाशवाणी दिल्ली ने चीख का हिंदी नाना सुल चिकतास कर्मा श्री का उसे ना चिकतास कर्मा चू ने चिकतास कर्मा आप चू चुक पा मांग मिख्यो तो ने डिग्रे में ना फिल्म लू सना चादेन चिकतास कर्मा आप चू का आकाशवाणी दिल्ली ने उर्दे नाना सुल निमेश तो निसे का मिड डे न्यूज निस्तास कर्मा चौहे का दोपहर समाचार निस्तंग फेदे का स्मुला सोनम दोर्जे यंग तेस्तिंग ने रशिया हिंदुस्तान सोनम सिरिंग साल खाने लोरिक सना चाहते हैं यंग निस्तंस कर्मा चुनाए का लद्दाख सेना नसुल सांचेस लापलेन

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया सभी प्रतिबंध हटाए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, Government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
4: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3-C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3-C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity. With Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
10: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees, and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency, or NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Tazia processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Uttar Pradesh government has taken strict action in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case, with the first FIR registered against 8 named accused and other unidentified persons. The FIR was filed following recommendations by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of the Chief Minister, Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station based on the written complaint of trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified accused. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat participated in New Delhi in the closing ceremony of year-long programs commemorating 50 years of the emergency yesterday. The event marked the culmination of a series of activities organized to remember the period and reaffirm democratic values. On the occasion, the Union Minister visited the Long-Lived Democracy and Digital District Repository exhibitions. Addressing the gathering, Mr. Shekhawat stated that the program was dedicated to honoring the unsung heroes of the freedom struggle, strengthening constitutional democracy and celebrating India's cultural legacy.
11: 55 years ago, on 25th June 1975, India witnessed one of the darkest nights in the history of its democracy. It was night when an attempt was made to suppress the spirit of the Constitution and undermine its values. The freedom guaranteed by the Constitution, including citizens' liberty, freedom of expression, and fundamental rights, were curtailed under the rule of an overly ambitious government.
10: The International Monetary Fund, IMF, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices. Addressing a regular IMF press briefing, Julie Kozak, director of IMF's communications department, said India's economy has remained resilient despite external headwinds supported by robust domestic demand. We have a report.
12: The International Monetary Fund said it continues to project India's economy to grow by 6.5% in fiscal year 2026-27, maintaining the upward revision made in April. Julie Kozak said the forecast reflected strong momentum carried over from last year and the reduction in US tariff rates, which helped cushion the impact of the global energy shock. Ms. Kozak also said India's economy had continued to outperform expectations during the first quarter of the calendar year.
13: India's economy has been growing robustly, and it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year.
12: She further said the IMF viewed the recent ceasefire in the West Asia and progress towards reopening the Strait of Hormuz as positive developments for the global economy. She noted that oil prices have retreated from their peak but remained around 10% above pre-war levels, while some other commodity prices have also begun to ease. The IMF is expected to provide updated global economic projections on 8th of July. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
10: In Venezuela, death toll after two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday in Caracas and the nearby coastal city of La Guaira. People could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger shock of 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. On to sports now. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned savior as a resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory against Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur. Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
14: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: Nashi Akashwani Leni Junjiktain Sgatochuzot Getang Petsontok Kasata Geltras Bakula Rinpoche Kutsesatnam Degrim Sanchez Lapolin Degrim Pulkan Gen Tubsan Paldan.

0: Dasang hijrangi sering nurputang ngawang rinchi ne sal kane lorik sana zats. Nga je akashwani le ne chunjik tain dis nga docho sot gu chaduk kasa ta tu sot sapigas ting ne ladak sana nasu sana zats.
1: BSNL ए फंतुक्स लेनखन गुनेपिया लद्दाख से नासा सोसे का 4G टावर गुजुक चोस्ते योत्खने कने फंतुक्स मंगपो लेनचिसला BSNL ए सिम लेना जाचिदो BSNL ए सिम लेना जाचिसला नेखोरे BSNL ए इक्छांगस्क्यो दाजाचिदो

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और? नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: चोरी।
1: दासिंगी जरंगे दो चोर फिल्मिलो किशोर कुमार तंग लता मंगेशकर ने सनाजाज लुरसुम खनिन पिन मजरू या लुयांस खनिन पिन राहुल देव बर्मन फिल्मिलो टिक्रिम पिना कसता आंगन की कली फिल्मिलो लता मंगेशकर ने सनाजाज लुरसुम खन शैलेंद्र या लुयांस खन बपी लहरी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता।

दासंगे शुरंगे सावन की घटा फ्ले मिलो आशा भोसले ने सनाजाज लुरसुम खन इन बिन एस एच बिहारी या लुयांग श्री खन इन बिन ओ पी नैयर डिग्री मिस्टिंग जुग पेखा कसता साथ साथ फ्ले मिलो जगजीत सिंह तंग चित्रा ने सनाजाद लुरसुम खन जावेद अख्तर या लुयांग श्री खन कुलदीप सिंह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to meet Queen Maxima of the Netherlands, who is also the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health and a long-standing global voice for financial inclusion. PM Modi said that India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Ministry of External Affairs said that her visit reflects the shared commitment to advancing financial inclusion and draws on India's transformative experience in leveraging digital public infrastructure for inclusive growth and sustainable development. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. UP Police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Kurnesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu along with other unidentified accused. The International Monetary Fund Director of Communication Department, Julie Kozak, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices.
4: India's economy has been growing robustly, and it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year. The economy in India had been growing in the first quarter at 7.8%.
3: In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned saviour as a resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory. And that is the end of this news bulletin.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति, अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं।
6: नीदरलैंड्स की महारानी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधी उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के जनधन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जो एक सरकारी पहल है और जिसके तहत परिवारों को किफायती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसंबंधों पर आधारित दूरगामी साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो रहा है। आज 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभिढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों से मृतकों की संख्या अब 235 हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: भूकंप के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
5: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास रोक दिए हैं। ओमान तट पर कल एक जहाज पर हुए हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके पहले ईरान की अनुमति के बिना जहाजों को नए मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: सबसे पहले बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। गोंजालो प्लाटा के शानदार खेल की बदौलत इक्वाडोर ने वापसी करते हुए ये मैच जीत लिया। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में जापान और स्वीडन का मैच ड्रॉ रहा, दोनों ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट में जगह बनाने में सफल रहे। उधर नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया और पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। अब बात निशानेबाजी की। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। बात महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और उधर T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। दूसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।
5: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Prime Minister Modi to embark on a three-day visit to Seychelles tomorrow as guest of honour for National Day Golden Jubilee celebrations. IMF hails India's economy as major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume today after 6 years. Death toll from strong earthquakes in Venezuela rises to 235. And in football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. We have a report.
9: During the visit, Prime Minister Modi will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and the commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors.

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:31 और 5 सेकंड हो चुके हैं और मुझे पता है कि आपको इंतजार है दिल के मेल बॉक्स का। तो जल्दी से अपने वो पसंदीदा गीत अपने नाम और शहर के नाम के साथ लिख भेजिए हमें जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन लिखना कहाँ है वही आज आपको बता दूँ कि कुछ तकनीकी वजहों से व्हाट्सएप मैसेजेस तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पर। जी हाँ, fmgold@gmail.com इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और सिर्फ ईमेल ही करिएगा आज, क्योंकि आज व्हाट्सएप मैसेजेस को मैं नहीं देख पाऊंगी। तकनीकी वजह ही कभी कभी हो जाती है, लेकिन परेशान मत होइए, एक और जरिया तो है ना हमारे पास। ईमेल भेजिए हमें, लिख भेजिए अपना वो पसंदीदा गीत जो आप सुनना चाहते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस, और दिल का मेल बॉक्स में आपके कुछ ईमेल्स हम तक पहुँच चुके हैं, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं इनको। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमें मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाईजान राजकुमार पुराना और सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का हमें मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा हमें लिखा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और आरती कुमारी ओम कुमार ने। कदमा जमशेदपुर से हमें मैसेज मिला है जिनमें महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का और अफरोज शेख ने हमें मैसेज भेजा है कहां से, सुपौल बिहार से। तो इसके अलावा हमारे पास बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू का मैसेज पहुंचा है। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना ने हमें मैसेज लिखा है। पत्थर के फूल और बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। और इसके अलावा हमारे पास होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु का मैसेज भी पहुंचा है और हमें लिखा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और अनिल जैन का हमें मैसेज मिला है संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन के साथ सरधना मेरठ से। और आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन भी हैं इनके साथ। और इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश का मैसेज। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा का मैसेज। भोपालगढ़ राजस्थान से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, नूर खान, अदनान फैजान का गंज रणवाड़ा से। और गांव कलाना राजस्थान से हमें विक्रम कनवासरा, सचिन कनवासरा, सतीश, योगेश और युधव ने मैसेज भेजा। और ये मैसेज किसका है, सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग का। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से हमें लिखा है और साथ ही प्रदीप सलूजा ने हमें लिखा है संगीता सलूजा के साथ, प्रथम सलूजा के साथ जनकपुरी से। और इसके अलावा हमारे पास और भी ढेर सारे ईमेल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन वही पुरानी आदत है कि बार बार आप मेल करते हैं, सिर्फ एक बार कीजिए काफी है। मीना अग्रवाल, महेश अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें ईमेल किया है। कमलेश मुकुल, सचिन दीपांशु ने हमें दिल्ली से लिखा है। और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि आप कभी सरनेम के साथ लिख देते हैं और कभी बिना सरनेम के, ऐसा मत करिए, एक ही बार नाम भेजिए। कस्बा कनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा का मैसेज हमें मिला है। और हमें लिखा है किस किस ने, बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोई भी गीत सुना दीजिए। ये ऐसे वाले जो दोस्त हैं ना हमारे, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, जो मेरी पसंद पे छोड़ देते हैं। गांव जाकोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला, योगेश, दीपक कुमारी, पूजा का हमें ईमेल मिला है। और हमें किसने लिखा है, ये अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, ग्राम पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं। और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश रहेगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इसकी पसंद हमें की है, किसने भेजी है, अफरोज शेख ने हमें लिखा है नेमुआ सुपौल बिहार से। इस गीत को सुनना चाहा है तो ये रहा आपके लिए खूबसूरत गीत।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्जरेखा क्रिस्टल वॉइस। दिल का मेल बॉक्स है ये, जहां पर आप लिख रहे हैं अपने दिल के पसंदीदा गीत। तो भाई अब आपके कुछ ईमेल्स को और शामिल कर लेते हैं। और बहुत सारे श्रोता जो चालाकी करते हैं ना, कि कभी किसी सरनेम के साथ, कभी किसी शहर के साथ, कभी किसी एड्रेस के साथ, तो कभी किसी दोस्त के साथ अलग अलग ईमेल्स करते हैं। ये मत करिए, मुझे सब पहचान में आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं। खैर, आपको सिर्फ समझा ही सकती हूँ प्यार से, और आप अच्छे दोस्त हैं तो समझेंगे भी जरूर। ऐसा मत करिए, सिर्फ एक जगह से जहां आप रहते हैं वहां के नाम से आप अपना मैसेज हमें भेजिए, और एक ही बार भेजिए, वरना मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास एक मैसेज पहुंचा है सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ का, और इसके अलावा इन्होंने ये लिखा कहाँ से है ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो महाराष्ट्र पुणे से। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुँचा है कैथल हरियाणा से, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा ने काफ़ी लंबी चौड़ी शिकायत की है और मैंने आपकी शिकायत बिल्कुल पढ़ ली है, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी कहा कि हमारे बहुत सारे श्रोता गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये शिकायत उन्हीं के लिए है। प्लीज़ ऐसा मत करिए, किसी को भी बुरा लगता है और मुझे भी लगता है। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता का मैसेज हमें पहुंचा है, और हमें लिखा है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का ईमेल, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का मैसेज हमें मिला है, और हमें लिखा महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ये मैसेज PS नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर का, नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से, सुपान ताइडे, नारायण इंगले और आशीष मोहिरकर का मैसेज। और हमारे पास ढेर सारे और भी ईमेल्स पहुंच रहे हैं। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया ने हमें बागपत उत्तर प्रदेश से लिखा है, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें लिख रहे हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख, और पूरे देशमुख परिवार ने हमें ये मैसेज किया है। इसके अलावा सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से हमें मैसेज पहुंचा है, और ये देखिए, एक बार दूसरे डिजाइन से और फिर दूसरे डिजाइन से आप मैसेज भेजते हैं, ऐसा मत करिए। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य, मेघा मस्कीन का मैसेज। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना का मैसेज। और हमें लिखा है फिर से देखिए, मैं कितनी बार कहूं कि ऐसा मत करिए। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा का मैसेज। और फिर से देखिए, मैं बार बार आपके मैसेजेस देख रही हूं और सेम मैसेज मुझे मिल रहे हैं। अपर कोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अब्बासी परिवार का हमें मैसेज मिला है। और हमें सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने लिखा है पदमा टॉकीज नेपा नगर से। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है शेरवानी स्कूल गंज टुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का। और अशोक कुमार विद्यार्थी, मधु, दीपिका विद्यार्थी, हेमंत, हर्ष, निशा, मयूर विहार से फेज 3 से हमें लिख रहे हैं। सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम का हमें सहारनपुर से मैसेज मिला है। और हमें लिखा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, आफ्ताब, ये तो फिर से हो गया, और उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, मोहम्मद अमीन का मैसेज मिला है, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री के साथ, अमर रमेश कुमार खत्री का हमें लिखा है चानेसर गोट कराची से। और सतप्रकाश सनूठिया ने रोहिणी से लिखा, पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का हमें मैसेज मिला है रघुपीर नगर दिल्ली से। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि सेम हैं और मैं उन्हें स्किप कर रही हूं। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती का मैसेज भी हमें मिला है सोफिया रहान के साथ, बली मारान दिल्ली से। बाकी के मैसेजेस को भी शामिल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन मारा माला सुरलकर, आरती कुमारी, ओम कुमार ने। अमर प्रेम फिल्म से ये खूबसूरत गीत किशोरदा की आवाज में आपने सुनना चाहा है, ये रहा।

और अब जल्दी से कुछ और ईमेल्स को भी शामिल कर लेते हैं। आदत तो आपकी वही है, बहुत सारे लोग रिपीट मैसेजेस भेजते हैं और मैं बार बार यही कहती हूँ कि मत भेजिए, एक ही मैसेज काफी है। बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम आशीष का हमें मैसेज मिला है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और धनोरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी के साथ ही हमें लिख रहे हैं। मास्टर खिल्लू, परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख और दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचा है। इंदिरा नगर भवरपुर से हमें राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज पहुंचा। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, और शाहरुख फारूक, शबनम शाहनाज का नजफगढ़ जयविहार से, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर पारुल मेरठ से हमें लिख रहे हैं विवेक वर्धन के साथ, और प्रवीण हागोणे, योगिता हागोणे, कुमारी प्रियाली हागोणे और पार्थ और पूरे परिवार ने हमें लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से, और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से मैसेज। साथ ही हमें विद्युत गोयल ने रोहिणी दिल्ली से लिखा है, और प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा का तिलक राज अरोड़ा के साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से मैसेज पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार ने, और ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल, साहनी पिंगावाला चौक कोराया जालंधर से हमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा ये मैसेज फिर से रिपीट है, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन का हमें मुल्लापुर दाखा से मैसेज पहुंचा है। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और कली मंसारी का हमें बस्ती, नई बस्ती गंज

रणवाड़ा से मैसेज मिला और हमें लिखा है कि इसने ये मैसेज हमें फिर से देखिए, रिपीट मैसेजेस हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह का हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से मैसेज पहुंचा। साथ में हमें लिखा

और समय पर दिल्ली से सब लिख रहे हैं हमें। इसके अलावा प्रदीप सलूजा ने जनकपुरी से मैसेज लिखा है, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना का मैसेज हमें मिला। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज हमें मिला। और ढेर सारे मैसेजेस हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, देख रही हूं कि रिपीट मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो कोशिश करिए कि दोबारा दोबारा ना लिखिए। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का हमें मैसेज मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से। और मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी का गंजवाड़ा से, लगता है ये दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं, बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जगदीश कुमार, राहुल, रितिका, नांगलोई से हमें मैसेज लिख रहे हैं। और अब जो भी मैसेज अगर बचेंगे तो कोशिश रहेगी शामिल करूं, लेकिन फिलहाल एक गीत शामिल करती हूं। और इसकी फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत, छुप गए सारे नज़ारे।

इसी के साथ सरोज बंसल, अनूप कुमार, अनूप कौर और गुरुग्राम से हमें लिख रहे हैं। साथ ही अब वक्त हो चुका है इस सफर से विदा लेने का, तो मैं रेखा फिर से मिलूंगी आपसे 11:10 पर, और तब रहेगा वक्त एक स्पॉन्सर प्रोग्राम का, और उसके ठीक बाद हम चलेंगे तस्वीर के सफर में। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from tomorrow to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said, India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General's Special Advocate for Financial Health. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packaged LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels. The International Monetary Fund Director of Communication Department, Julie Kozak, has said India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices.
4: India's economy has been growing robustly, and it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year. The economy in India had been growing in the first quarter at 7.8%.
3: The National Testing Agency, NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Vice President C.P. Radhakrishnan called upon people to reaffirm the collective resolve to build a Nasha Mukt Bharat on the International Day against drug abuse and illicit trafficking. In a social media post, Mr. Radhakrishnan appreciated the universities, educational institutions and organizations that are actively carrying this movement forward. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said he held meaningful discussions with his UK counterpart, Secretary of State for Business and Trade, Peter Kyle, in London. In a social media post, Mr. Goyal said they explored new opportunities to deepen India-UK economic and trade cooperation. He said the conversation reflected the warmth, trust and forward-looking vision that continue to define the bilateral partnership. On Ashura-e-Muharram, Prime Minister Narendra Modi recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussain. In a social media post, he said, Hazrat Imam Hussain continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. Mr. Modi emphasized that this also serves as a reminder of the lasting strength of courage and conviction. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. And that is the end of this news bulletin.

0: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि हमारा लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे हैं तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले हैं तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में फिर मिल रहा है, सिला क्या है, इनाम क्या है, मुझे बताओ मेरा मकाम क्या है। कभी मुझसे सुनो लाडलो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, मुझसे पूछो कहाँ गई मेरी वो रंगों भरी जवानी।
1: तो याद रखना, तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ ये करते करते गुजार दी है। गुजरी है तो सोचता हूँ, गुजर रही है तो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है।
0: दोस्तों, फादर जिंदगी का वो एहसास है, वो वजूद है जिसके बिना किसी की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गोद में खिलाने से लेकर उंगली पकड़कर चलना सिखाना और फिर जिंदगी की राह में आगे बढ़ाते चले जाना, यही सपना हर पिता की आंखों में हमेशा समाया रहता है।
1: पिता वो छांव है जो धूप में भी ठंडक देती है। जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, पिता का एक हाथ जब कंधे पर आ जाता है और लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा है ना मुझे संभालने के लिए।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
3: पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, उनकी हर बात में एक सबक होता है और ये बात हमें समझ आती है जब जब हम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। फादर, वो इंसान जो हमेशा हमें सब कुछ देता रहा, उसे भला हम क्या ही दे सकते हैं।
4: माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अटूट बंधन है। ये वो ढाल है जो बिना किसी शर्त के बच्चे के हर कदम पर उसका समर्थन करती है, उसे जीवन के अच्छे मूल्य सिखाती है और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।
3: बचपन की बातें तो हम में से बहुत से लोगों को याद होंगी। वो जब हमें कहीं घुमाने ले जाते थे तो अक्सर घूमते घूमते जब हम थक जाते थे तो पापा को बहुत प्यार से कहते थे, पापा बहुत थक गया हूँ, अब नहीं चल सकता। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा जाते थे,
4: फिर प्यार से आगे बढ़ते और मुझे अपने कंधों पर बिठा लेते थे। पापा के कंधों पर बैठकर ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में मुझसे ऊपर अब कोई नहीं है।
3: किसी मंदिर में भगवान के दर्शन ना हो तो भी वो हमें अपने कंधों पर उठाकर भगवान के दर्शन करवाते थे। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि जिसने मुझे अपने कंधों पर उठाया है, असली भगवान तो यही है।

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
2: प्यार के इस खूबसूरत रिश्ते की एक और पहचान भी है, बेटी और पिता का रिश्ता, पापा की परी, पापा की लाडली, पापा का अच्छा बेटा, और ना जाने ऐसे कितने ही नाम जो बेटियों को पापा से मिलते हैं। बेटियों को देखकर पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है,
3: और पापा को देखकर बेटियों के चेहरे पर जो रौनक आती है उसको शब्दों में बयान करना असंभव है। पापा के चेहरे पर कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, पर बेटी की एक झलक, उसका मासूम सा चेहरा देखकर पापा की सारी टेंशन पलक झपकते ही गायब हो जाती है।
2: शायद इसीलिए ही बेटियों को पापा की लाडली कहते हैं। बेटियां भी पापा को प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पापा की परियां अपने पापा के चेहरे पर प्यारे से मुस्कान देखने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती हैं।
3: कभी अपनी मासूमियत से उनका मन मोह लेती है, तो कभी जी जान लगाकर अपने पापा का सपना पूरा कर उन्हें गर्व महसूस कराती है।
2: तो कभी बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, और कोई दूसरा अगर इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा भी मान जाती हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद
1: बताओ और कमाओ, इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेज और सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
0: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-38721 पर।
2: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
0: जीवन में हम उसे दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
0: एक बार फिर शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड 100.1 पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद
0: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये है तस्वीर और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आर्शरेखा क्रिस्टल वॉइस और इस सफर में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम और आप साथ साथ। आज कहाँ की सैर पर लेकर चलूंगी जरूर बताऊंगी। कहते हैं हर शहर का अपना रंग होता है, अपनी तहजीब, अपनी पहचान होती है और यही उसकी आत्मा होती है। और आज हम जिस शहर की तहजीब और विरासत से मिलने जा रहे हैं वो है भुवनेश्वर। जी हाँ, उड़ीसा का भुवनेश्वर, जहाँ आज आप और हम चलेंगे साथ साथ इस जगह की सैर पर। ये शहर किसी जमाने में 7000 मंदिरों का घरौंदा हुआ करता था, आज भी वही विरासत यहाँ की हवा में है। भगवान शिव के नाम त्रिभुवनेश्वर, जी हाँ त्रिभुवनेश्वर के नाम पर इसका नाम भुवनेश्वर रखा गया था और इसी वजह से आज भी इसे भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की आराधना आज भी की जाती है। भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में भगवान शिव अपने दर्शन देते हैं। उनका महत्व तो इतना है कि हर दिन भारत और विदेश से करीबन 6000 श्रद्धालु भगवान को दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत कुछ है इस जगह के बारे में जानने के लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं सफर के प्यारे से गीत के साथ और उसके बाद बताऊंगी भुवनेश्वर के बारे में बहुत कुछ। जुड़े रहेगा मेरे साथ तस्वीर के इस सफर में। आपकी दोस्त आर्शरेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। आज इस सफर में 11:27 और 36 सेकंड हो चुके हैं।

में परदेसी मत होइए, देश के कोने कोने को देखिए और जानिए कि कितना खूबसूरत है अपना भारत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत के उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में एक खास व्यापारिक केंद्र और धार्मिक केंद्र है। अक्सर टेम्पल सिटी कहा जाने वाला भुवनेश्वर दो अलग ओडिशा शहरों पुरी और कोणार्क के साथ स्वर्ण त्रिभुजा बनाता है। और इतना ही नहीं, भुवनेश्वर में कुछ प्रतिष्ठित स्मारक और सुंदर प्राकृतिक आकर्षण भी हैं। भुवनेश्वर में आपको उदयगिरी और खंडगिरी जैसी ऐतिहासिक गुफाएं, लिंगराज मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर और बीजू पटनायक पार्क जैसे सुंदर उद्यान देखने को मिल जाएंगे। भुवनेश्वर में और क्या क्या खास है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस पूरे सफर में रहना होगा। भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं जो कि भुवनेश्वर से कुछ मील की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं रॉक कट गुफाएं हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें जैन भिक्षुओं ने बनाया था। गुफाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं और इनकी दीवारों पर शिलालेख लिखे हुए हैं। दो गुफाओं के भीतर कई छोटी गुफाएं भी हैं जिनमें खास तौर पर पत्थर की नकाशी, पैरों के निशान और मूर्तियां हैं। खंडगिरी पहाड़ी पर आप एक खूबसूरत जैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, तो ये जगह सचमुच देखने लायक है, इसे बिल्कुल मत चूकिएगा देखने से। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी है जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और लिंगराज मंदिर शहर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। 7वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर धार्मिक रूप से भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के भौतिक रूप को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि ये इस जगह से खुद प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। ये शहर के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और पूरे भारत में सबसे बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। टावर की ऊंचाई 180 फीट है और गर्भगृह के अंदर 8 इंच का शिवलिंग है। मंदिर विदेशी पौधों और बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ एक सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है, तो इस मंदिर की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भुवनेश्वर में एक शांति स्तूप भी है। शांति स्तूप को शांति शिवालय भी कहा जाता है और इसे 70 के दशक में जापान बुद्ध संघ और कलिंग निपोन बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया था। ये भुवनेश्वर पुरी के रास्ते में से लगभग 7 किलोमीटर दूर धौलीगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग इस स्थान पर ध्यान और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। शांति स्तूप स्तूपों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि ये राजा अशोक के शासनकाल के समय का है। पौराणिक कथाओं की माने तो प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने यहाँ धौलागिरी में भगवान बुद्ध को अपनी तलवार भेंट कर युद्ध त्याग दिया था। और अगर मैं बात करूं तो आप जा सकते हैं भुवनेश्वर में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। ये भी अपने आप में बहुत खास है। कई प्रमुख चिड़ियाघरों में से जो भारत में मौजूद हैं उनमें से एक है जो इसे भुवनेश्वर में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक बनाता है। चिड़ियाघर पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है, भरा हुआ है, जो एक जंगल के भीतर बनाया गया है। चिड़ियाघर में लॉयन सफारी, बोटिंग और केबल कार जैसी कई ऐसी गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं। प्रकृति और जानवरों के प्रति रुचि रखने वालों के लिए ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने सफेद बाघ और स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों की विशाल विविधता अगर देखनी हो तो यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। लोकप्रिय चिड़ियाघर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है, चंडका जंगल के बीच स्थित है और आप चिड़ियाघर के भीतर एक विदेशी किस्म की वनस्पतियों को भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो भाई अपने आप में ये जगह भी बहुत खास है। आप चाहें तो कलाकृतियों का संग्रहालय, भुवनेश्वर जनजातीय कला और संस्कृतियों कलाकृतियों का संग्रहालय है, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यानी म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स इन भुवनेश्वर। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास जनजातीय कला और कलाकृतियों का संग्रहालय है ये, जहाँ पर ऐसी चीजों का संग्रह आपको मिल जाएगा। और ये म्यूजियम देश के सर्वश्रेष्ठ जनजातीय संग्रहालयों में से एक के रूप में लोकप्रिय है। 1953 में स्थापित संस्था अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आती है, जो आदिवासी संस्कृति को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करती है। लोग यहाँ पर संग्रहालय के 5 अलग अलग हॉल्स में घूम सकते हैं जो स्थानीय जनजातियों, उनकी संस्कृति और जीवन शैली के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। यहाँ कपड़े, गहने, संगीत, वाद्य यंत्र, हथियार, घरेलू वस्तुएं, कला, तस्वीरें, बहुत कुछ है जिनकी प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए, लेकिन इस गीत की बात आपको बताऊंगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल ये गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज में।

0: मेरा नाम।
1: एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी जहां भी जाए सुनते रहे तस्वीर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
5: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 11:41:31 हो चुके हैं और आज क्योंकि शुक्रवार है, इससे पहले कि तस्वीर के सफर में मैं आगे बढ़ूं, आपको याद दिला दूं कि शुक्रवार को शाम 5:10 पर वक्त रहता है पानी पर लिखी कहानी का। तो आज की कहानी जरूर सुनिएगा और आज की कहानी है अंजलि, आलेख रश्मि रवेजा का, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनिएगा इस कहानी को, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। वेल, अब हम बढ़ते हैं अपने उस सफर में जहां पर हम चल रहे थे साथ साथ तस्वीर के सफर में। आज हम कर रहे हैं यात्रा भुवनेश्वर की और भुवनेश्वर में क्या है देखने के लिए मैं आपको बता रही थी। तो अगर आप चाहें तो यहां का ओडिशा राज्य का संग्रहालय है एक जो आप देख सकते हैं। ओडिशा राज्य संग्रहालय प्रोफेसर NC बनर्जी और प्रोफेसर घनश्याम दास के दिमाग की उपज है, जो रेनशॉ कॉलेज के 2 प्रख्यात इतिहासकार हैं। संग्रहालय का चक्कर लगाने और अलग अलग प्रदर्शनियों को देखने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का वक्त चाहिए। संग्रहालय में कुल 9 अलग अलग हिस्से हैं, खंड हैं, जिनमें अलग अलग संग्रह हैं जिन्हें इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ कई मूर्तियां, तांबे की प्लेटें, प्राचीन वस्तुएं, नमूने और बहुत कुछ है। तो संग्रहालय में विभिन्न गैलरीज में पेंटिंग, शस्त्रागार, प्राकृतिक इतिहास की जानकारी और पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं। आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की संस्कृतियों और इतिहास से परिचित कराएंगी। और आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो सचमुच कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो उनमें से एक है लिंगराज मंदिर, जैसा कि मैंने कहा 7वीं सदी में इसे बनाया गया था। तो आपको इस मंदिर को जरूर देखना चाहिए। और खास बात यह है कि जब भगवान शिव का सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि होती है तो यहाँ पर एक अलग ही भीड़ देखने को मिलती है। तो आप अगर चाहें तो इस अवसर पर भी यहाँ जा सकते हैं। परशुरामेश्वर मंदिर है जो कि बहुत ही खास है और ये भी उड़ियन वास्तुकला का नमूना है। 650 ईस्वी में बना ये मंदिर आपको नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की याद दिलाएगा। तो इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। हर तरफ ढेर सारे छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं और शिव के साथ ही भगवान गणेश और माँ पार्वती की नक्काशीदार मूर्तियां भी इस मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं। तो आपको इस मंदिर को भी जरूर देखना चाहिए। राजा रानी मंदिर है यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ प्रेम को अलग अलग रंगों में प्रकाशित किया जाता है। नायक और नायिका की प्रेम दर्शाती नक्काशी वाली मूर्तियां यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी और ये भी अपने आप में बहुत खास है। भगवान शिव और मां पार्वती के खुदे हुए चित्र यहां पर आपको नजर आएंगे और इसलिए भी ये मंदिर काफी लोगों की भक्ति का केंद्र है। आदिवासी कला और कलाकृति म्यूजियम भी आप देख सकते हैं, जो राज्य के बड़े शहरों में अपनी कला और संस्कृति जिंदा रखने के लिए म्यूजियम हुआ करते हैं। भुवनेश्वर चूंकि उड़ीसा की विरासत का केंद्र है और आदिवासियों की कई प्रजातियां आज भी यहां मौजूद हैं, उन्हें जानने और सीखने का मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम उस नजरिए से तो आपको दुनिया जरूर देखनी चाहिए यहां जाकर, और आप खुद जान जाएंगे कि ये अपने आप में कितना खास है। खंडगिरी की गुफाएं, जैसा कि मैंने कहा, यहां पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा डारस बांध है जो आप देखने जा सकते हैं। अगर किसी शाम में आप कहीं ऊब रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ अलग करना है, तो आप चले जाइए यहाँ के डारस बांध। यहाँ सिंचाई के लिए इसे बनाया गया था और ये अब पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसके चारों तरफ फैला हुआ घास का मैदान, ठंडी हवा इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं, तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। और बिंदु सरोवर जैसा डारस बांध है, उससे कुछ अधिक पवित्र बिंदु सरोवर है। कहा जाता है कि इस सरोवर का पानी सभी पवित्र नदियों और तालाबों से शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये सरोवर लिंगराज मंदिर के पास में स्थित है, तो और भी ज्यादा ये खास हो जाता है भक्तों के लिए। जरूर आपको यहाँ जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ भुवनेश्वर जाने की, तो सबसे सही समय कौन सा है? भुवनेश्वर अपने ऐतिहासिक परिवेश के लिए जाना जाता है। घूमने के लिए ढेर सारी जगह होने के बाद समुद्र यहाँ से बहुत दूर नहीं है। गर्मियों के मौसम में तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और मॉनसून के महीनों में तो ये यूं कहूं कि झूम झूम कर बरसता है यहाँ पर सावन, या फिर मॉनसून अगर मैं बात करूँ तो। पानी की जो खबरें हैं वो दिल्ली तक पहुंचती हैं, और इसलिए आपको अगर यहाँ जाना है तो फिर आपको सर्दियों का समय जो है वो सबसे बेस्ट है। अक्टूबर के से फरवरी के महीनों में यहाँ आने का प्लान आप बना सकते हैं। और पहुंचना कैसे है ये भी बता दूं, हवाई मार्ग से अगर आप चाहें तो उड़ीसा में अकेला हवाई अड्डा बीजू पटनायक हवाई अड्डा है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, और भारत के हर बड़े हवाई अड्डे से आपको यहाँ के लिए फ्लाइट्स मिल जाएंगी। आप बाय ट्रेन यहाँ जाना चाहें तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भारत के हर बड़े स्टेशन से जुड़ा है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहां से आपको कैब और टैक्सी मिल जाएंगी, जिससे आप कहीं भी घूमने के लिए निकल सकते हैं। और सड़क मार्ग से अगर आप यहां जाना चाहें तो भुवनेश्वर बस अड्डे की दूरी 8 किलोमीटर है, लेकिन उड़ीसा परिवहन की बसें आपको मंजिल तक पहुंचा ही देंगी। तो बेफिक्र होकर भुवनेश्वर की यात्रा पर निकल चलिए। फिलहाल तो एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, और उस गीत के बाद और भी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। जुड़े रहिएगा तस्वीर के सफर में। 11:46 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस।

ओडिशा का भूगोल और संस्कृति की अगर बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसका विस्तार पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से है। पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी भी है जहां पर विशाल समुद्री तट आपको नजर आएगा इसका। और अगर मैं बात करूं इस जगह की तो ये जो जगह है उड़ीसा का जो इतिहास है, अगर इसकी बात करूं तो उड़ीसा जिसे पहले उत्कल, कलिंग और ओट्र के नाम से जाना जाता था, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है और ये प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था और इसकी ऐतिहासिक नींव महाभारत काल तक है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र मौर्य, गुप्त, शुंग और गजपति राजवंशों के था और खास रूप से कलिंग साम्राज्य अपनी शक्ति और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ईसा पूर्व 261 में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस भीषण युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ओडिशा की स्थापना की बात करूं तो ब्रिटिश शासन के दौरान ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत

राज मंदिर चिल्का झील भी यहाँ प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं। उड़ीसा की प्रमुख भाषा उड़िया है, जिसे 6वीं शताब्दी में ईस्वी में विकसित संस्कृत और प्राकृतिक भाषा माना जाता है, और ये भारत की शास्त्रीय समुद्री मील में से एक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो त्योहारों में रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति, ओबड़ी और उदान उत्सव मनाए जाते हैं। राज्य की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ जैसे ओडिसी नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से खास है ये राज्य। अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है इसका, और सांस्कृतिक चमत्कार संघर्षों की कहानी भी इसके साथ जुड़ी है। अगर यहाँ के खाने की बात करूँ तो यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी स्वादिष्ट होता है। अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे काफी। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ के पारंपरिक ओडिया व्यंजनों का भी मजा जो है यहाँ लेने का मौका मिलेगा। यहाँ की पाक शैली एक अलग ही तरह की टेस्टी और स्वादिष्ट है। चावल चपाती के साथ यहाँ खाया जाता है, और खाना पकाने में सादगी जो है वो अपनाई जाती है। छेना पोड़ा एक प्रमुख ओडिया व्यंजन है, जो बेक्ड पनीर मिठाई है, जिसे खास तौर से त्योहारों और खास अवसरों पर खाया जाता है। सरसों के तेल, पंच फोरन, पांच मसालों का जो मिश्रण है उससे बनाया जाता है। कई चीजें यहाँ पर ऐसी भी आपको मिल जाएंगी, और अनूठी सुगंध के साथ आप इसका स्वाद ले सकते हैं। स्ट्रीट फूड में भी जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कई तरह की चटनी से बना एक तीखा मसालेदार नाश्ता जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कटक चाट इसे कहा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर में सबसे बढ़िया खाने की तलाश करने वालों के लिए शहर अलग अलग स्वादों से भरा हुआ है, तो आपको ये किसी तरह से निराश नहीं करेगा। आपको यहाँ जरूर एक बार स्वाद जायका चखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं पकला भात, जो कि यहाँ का एक पारंपरिक ओडिया व्यंजन है, आपको इसे भी ट्राई करना चाहिए। और ओडिया भाषा यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपकी हिंदी समझने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और ओडिया के अलावा मुख्य रूप से असमिया और बंगाली भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ किया जाता है। ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग, इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, त्योहारों की बात की तो रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ईद, क्रिसमस, सभी तरह के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। तो भाई जब भी मौका मिले पहुंच जाइए भुवनेश्वर की यात्रा पर। जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त थोड़ा कम है, तो अब बस मुझे लेनी होगी आपसे इजाजत। पर ऐसे ही नहीं, एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूं, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। जुड़े रहिएगा क्योंकि 24/7 FM गोल्ड आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है। फिलहाल मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूं आज के लिए आपसे विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी।

0: डंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
4: Stephen, happy birthday to you!
5: Happy birthday to you, Stephen!
6: Thank you. How are you?
7: Happy birthday, Stephen! Thank you,
6: congratulations!
7: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
4: Oh, fine.
7: Thanks for coming in. Please come in. Please.
5: Oh, sure. Yes. Why not?
4: Come.
5: Hey.
4: Come. John, please come here.
5: Oh, sure. Hey.
7: Join us for a drink, please.
2: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
5: हाँ।

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
12: हाँ।
11: गुड़िया गौरव सब तैयार?
13: हाँ जी बाजी, हम तैयार हैं।
11: वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
13: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ।
13: हाँ? हाँ? कैसी पहेली है?
11: सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
13: सूरज।
11: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
13: बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
13: अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
13: हाँ।
11: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
13: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।

0: एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ।
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है,
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: नहीं, जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: NCERT chindak dat kanitigrim umang sanazat ngaje akashwani leni junjiktain nime chutot chik chadu kasata akashwani delene smolla hindi yang testing ne angrezinanga nasul sanazat.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 284 आश्चर्य 9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और शॉर्ट वेव 49 मीटर्स बैंड पर ये आकाशवाणी लेके आवाज़ है। आइए सुनते हैं फौज भाइयों के लिए फिल्म गीतों का प्रोग्राम।

जय हिंद फौज भाइयों, इस वक्त के प्रोग्राम में आप सुनेंगे फिल्म गीत। तो आइए प्रोग्राम के शुरुआत में सुनते हैं उदाव और मनोहर शेट्टी की आवाज़ों में मोहब्बतें फिल्म से ये गीत।

फौज भाइयों के इस प्रोग्राम में आइए आप सुनते हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषल की आवाज़ों में सिंग इज किंग फिल्म से ये गीत। गीतकार है मयूरपुरी और संगीतकार है प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे अर्का याग्निक और उदित नारायण के आवाज़ों में धड़कन फिल्म से गीत। लीजिए आप सुनिए फौजी भाइयों ये अगला गीत, क्योंकि फिल्म से उदित नारायण और अर्का याग्निक की आवाज़ों में।

हरी अरन की आवाज में लीजिए सुनिए ये अगला गीत यादें फिल्म से। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है अनु मलिक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: BSNL japto lenkan gunifia juaje BSNL ladak se nasa soseka 4G tower lans de yoteno dine 4G japto se phantos lenchezla 4G sim nyekore BSNL CC yariteler gunikan elen nyachezino roxefia nyekore BSNL iksangashkyo da zat
2: फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम के अंत में आइए आप सुनते हैं इरफान की आवाज़ में केक फिल्म से ये गीत।

इस गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए इस वक्त का प्रोग्राम समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर दाखिला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर अतीये में खुरद व्रत के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम AI सप्लाई चेन बनाने के लिए अमरीका की क्यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। मर्दों के क्रिकेट में आज शाम बेलफास्ट में T20 बैन अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इस मैच में सभी की नजरें पहली बार के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर हैं। और फीफा आलमी कप में ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने पैराग्वे के खिलाफ खेले गए मैच में कोई गोल न करते हुए ये मैच बराबरी पर खत्म हो गया। खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने नशीली मादों की रोकथाम के मकसद से एक मुत्तहिदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली मादों की ये लानत कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, माशी मफादात और नौजवानों नीज मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने रूहानी पेशवाओं, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए एक वाहिद प्लेटफार्म पर यकजा हों। जनाब शाह ने यह राजधानी नई दिल्ली में नॉर्को ताउन मरकज NCORD की आला सतह की 10वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: सेहत की मरकजी वजारत ने एक नोटिफिकेशन का मसौदा जारी किया है, जिसमें नशीली दवाओं के जाब्तों में तरमीमात तजवीज की गई हैं। इन जाब्तों के तहत दरामद शुदा दवाओं पर इन्हें कम से कम 12 महीने तक रखने की मुद्दत लिखी होनी चाहिए। मसौदे में नशीली दवाओं से मुतालिक 1945 के जाब्तों में से 31वें जाब्ते में तरमीम के लिए कहा गया है। वजारत ने बताया कि इस मुजवजा तब्दीली का मकसद मरीजों के लिए क्वालिटी वाली दवाओं की लगातार दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए दवाओं की सप्लाई चेन में बेहतरी लाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरखास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। भारत ने एक भरोसेमंद और मुस्तहकम सप्लाई चेन बनाने के लिए अमरीका की क़यादत वाली तहरीक के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद मसनूई ज़हानत AI पर मबनी टेक्नोलॉजीज को मजीद ताकतवर बनाना है। यह दस्तखत कल वाशिंगटन में दूसरी पैक सिलिका समिट के दौरान 34 मुल्कों के साथ किए गए हैं। इक्तसादी उमूर से वाबस्ता अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकोब हेलबर्ग ने बताया कि अमरीका भारत के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 21वीं सदी का एक सबसे नतीजा खेज मुआहदा बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड और ट्रस्ट पहल समेत कई फोरमों में भारत और अमरीका के दरमियान कलीदी शोबे में तबादला ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन और भारतीय सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। भारतीय वफ ने सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत और मजबूत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में इश्तराक को आगे बढ़ाने से मुतालिक सनती रहनुमाओं के साथ मुजाकरात भी किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। इस महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज AIR मोबाइल ऐप से नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO

जनाब मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की तहरीक आजादी के लिए मुल्क को वंदे मातरम का अतिया किया, जो सबसे ज्यादा जिंदा व पाइंदा रहने वाला तहरीक का एक जरिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी जिंदगी में महरूम पसमानदा तबकों और इस्तेशाल शुदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने कहा कि उनके अजीम नजरियात आने वाले दिनों में कौम की रहनुमाई करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के ख्वातीन के फोरम 2026 में ख्वातीन की क्यादत वाले तहरीक के अपने अज़्म को दोहराया है। आज एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नापूर्णा देवी ने जोर देकर कहा कि ख्वातीन महज तरक्की के फायदे हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि वो 2047 तक विकसित भारत की ताकतवर तरीन महादिक भी हैं। भारत में जर्मनी के सफीर फिलिप अकरमान ने कहा है कि भारत काबिल तदीद तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए जनाब अकरमान ने तजारत, सियासत और कलीदी शोबे में ज़बरदस्त ताउन को उजागर करते हुए भारत और जर्मनी के दरमियान माहौल के लिए साजगार और पायदार तरक्की में शराकतदारी की कामयाबी को उजागर किया। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक़ सदाकत और इंसाफ की सरबलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक़ इंसाफ के तई पाबंदी की इकदार को तहरीक मिलती है। आशूरा मुहर्रम के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि इससे हमें हिम्मत और यकीन के पायदार कुव्वत की याद दहानी भी होती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यौम आशूरा मुहर्रम के मौके पर ट्रैफिक के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। सेंट्रल रेंज के ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निशांत गुप्ता ने बताया है कि इस इलाके में ट्रैफिक के बंदोबस्त और लोगों की हिफाजत की यकीन दहानी के लिए तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमिल पुलिस अमला तैनात किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेताजी सुभाष मार्ग से आने वाली गाड़ियों को जामे मस्जिद की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक का रुख नेताजी सुभाष मार्ग से दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और मुहर्रम का जुलूस बिला रुकावट आगे जा सके। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अक्वामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे सैन फ्रांसिस्को बे स्टेडियम में ग्रुप डी के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है, हालांकि उसका पैराग्वे के खिलाफ मैच हार जीत के बगैर खत्म हो गया। आखिर में खास खबरें एक बार और। वजीर दाखिला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहिदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर रतिये में खुरद बुरद के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम आई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमरीका की क्यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आशूरा मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business,
3: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति

0: अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाठी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव किलोहर्ट्स चिक्सतोंग अपचुंग अक्सुम यांगना मीटर्स बैंड निपक्या ग्याचुक्यापजितांग चुजुर्कु शॉर्ट वेव मीटर्स जिपचुजर्कु थोकने ngaje akashwani lene shunjiktain ngime chutsot nistang petsonstok kasata chutsot nistang skarmang apchung anga chukpa junglurik sanchez la polin ina changma sangsngola sonam dorje sarkane junglurik sanajat

इबो आकाशवाणी ले इन कसेतेयांग चिंटोलमा न नाचुलसना जात मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर उजुक से नंगा छी तोनसने पार्लियामेंट्री तोनसने कमेटी लद्दाख से जिसकोर जाते नोक जिसकोर रिंग दर्शेश क्यों जोन बाबी के सक्से ने ले नंगा पार्लियामेंट्री छी तोनसने लोन खुंग से कमेटी थुजमी कुंतंग यंपो जलजम जाते लद्दाख से ना छोलता सो गुन स्कोला ठोस तुगा जाते नोक यंग ते गुन सिलचेजला लसी शुली न्यूत का स्कोला शला जाते नोक शेश क्यों जोन लद्दाख से खोरुक ठोलमो गुनी थोगा शादा जा दिन जिकतांग छुसको ने तोनसा सेलचेज ला प्रोजेक्ट हिम सरोवर रॉक चेक डैम माछात या छिन मिलदाने का गोश्चांग ला सुख सुख जे सिलास गोशुलकन गुनी स्कोला ठोस थुगा जाते नोक सोजुंग जुनी तोनसा ने लोनपो डॉक्टर मनसुब मंदवे लद्दाख से जिसको लश्कोते नोक जिसको लश्कोते नोक या सोजुंग लोनपे माए बारा रे रंग था ला छकला जात कन जुनु गुंतांग यम पो जलजम जाते नोक खोंग जुनु गुन ला यरगा सिलास लास sirguni nanga thukak lenchis las pospa salte nok ladak sinanga cha tungtung gaston siche sispas peot kan school la tongchi eshis kundre tsokspa jigis kap sungro zate nok cha tungtung gaston siche semigul bo reception gunskep che silas gantang stawa khaspel zache zinok yang i gaston ring da mimang stang jangji ni parla tende lilda nika delot kan tang naste jus kan tang changtang zong inanga jangji ni ka tente chepidis kap la shang school ches po nok Moram diring ijak chupe jaga yang na ashura tatkuz gangsha ne thokne siye zadin jik tang enok. Moram islam iston ba imam Hussein karbalay thang eka skushok salte saltka ne siwe na asishung zadin jik tang enok. Zamli jiste pia dharma yatra ladak sina zadin yotka ne diring ijak jipe jaga therabada gindun guni saspo tse tang likir gamyu le na nga lepte enok. Drigung dharma foundation italdi eka ladak se gamyu sose na nga therabada gindun guni jibe tromskor ping injiktang nok yang likir gonpe gindun guntang gamil pa goni dharma yatre na athu za jat kan gindun gun laga su jab ge jwa jate no yang nang pe chose norkal kun skola shal jate no sojun shere gi lon po wande matra mi skola thos tu ga jat injiktang I bor gyu te gya gare rangwa las gule na nga chikdil bor kha ne gyal kha ge lu ji gi nok mala jate no new delhi na nga brics yuli da ne shunskyo pe lapton pe chos pa chos injiktang no chos pe na nga shunskyo pe lapton pa ji dogali shunskyo be thokne jikspa tang cholta soma gun selches la thuksam salgo sika shuzge bazat

0: तो जुले नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं लेकर के आप सबका मनपसंद प्रोग्राम हेलो फरमाइश। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका होस्ट दिलिक्स और शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की, जहाँ पर आप हमें कॉल करते हैं और अपने गानों की फरमाइशें रखते हैं। बेसब्री से इंतजार रहता है हमें ताकि हम आपसे बात कर सके और आपकी गानों की फरमाइशें सुन सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर के साथ।
1: हेलो फरमाइश
2: जी। आदाब सर।
1: आदाब, सलाम अलैकुम।
2: सलाम अलैकुम सर, आप ठीक हो?
1: बस जनाब, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं जनाब?
2: बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, आपके यहाँ सब ठीक है? आपका पूरा टीम ठीक है? मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ साहिल सर।
1: जी बिल्कुल साहिल साहब, आप तो हमारे पड़ोस में ही बैठे हैं।
2: जी बिल्कुल सर,
1: हमारा सारा टीम ठीक है। और आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
2: श्रीनगर में तो आजकल मौसम बहुत ही खूबसूरत है, टूरिस्टों का भी रश है और हर हाल ही में माता खीर भवानी का मेला भी खत्म हुआ है और अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, साहिल साहब आप करते क्या हैं?
2: जी मैं कश्मीर आर्ट के साथ करता हूँ सर।
1: बिल्कुल, फिर तो आपको टूरिस्टों के साथ रोज मिलना मिलाना रहता होगा।
2: बिल्कुल सर,
1: इस बार टूरिस्ट कैसा है साहिल साहब?
2: बहुत अच्छा रश है सर इस बार।
1: चलो बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
2: गाना सुनने से पहले मैं एक गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
2: आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, बदल लेना आवाज बदल लेना, की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अजियार वही रखना अहबाब बदल लेना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रास्ते में रुला देना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, एक खेल समझ लेना शिद्दत की मोहब्बत को, जब चाह चले जाना जब चाह चले आना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। जी सर
1: बहुत खूब, तो आपको शेर व शायरी का भी शौक है?
2: जी सर बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत ही खूब शायरी सुनाई आपने और बहुत बहुत

0: आपका
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर
0: जी। साहिल साहब गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: एक फिल्म आई थी कच्चे धागे
0: जी बिल्कुल,
1: उसका एक नगमा है हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ हमें कौन सुन रहा है साहिल साहब
1: जी? पहले तो जो भी इस वक्त ये हमारा हेलो फरमाइश सुन रहे हैं वो सब सुनेंगे, और ये मेरे भाई दो मुश्ताक और इम्तियाज।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और मोहम्मद शफी कुंदूज साहब।
0: बिल्कुल साहिल साहब, आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं कच्चे धागे फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार सर
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: हम तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हैं, और आप जब कॉल करते हैं तो हमारा दिन और भी अच्छा हो जाता है। राकेश जी, शिमला में कैसा मौसम है आजकल?
1: शिमला में बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। अभी जो है बारिश हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी, और अभी जो है धूप हो गई है, तो अब बरसात भी आने वाली है, तो क्या बोलते, बरसात का मानसून सीजन आ जाएगा, तो और हिमाचल और लेह के लिए तो थोड़ी परेशानी ये होती है कि बरसात में सिग्नल वगैरह या नेटवर्क वगैरह कम होते हैं।
0: जी बिल्कुल, और बरसात में रोड भी थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है।

0: रोड भी रिस्की हो जाता है, खासकर जो बागवानी क्षेत्र के लिए जो जो सेब की जो गाड़ियां जो है ले जाती है, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बागवानी को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं?
0: बस अब तो मैं तो घर पे रहता हूँ, और हम तो जैसे कि मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में कॉल किया, तो हम बागवानी करते हैं सेब की।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, हम उसकी ये देख रेख करते हैं, और आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ कि मैं बचपन से दृष्टिबाधित हूँ, तो हम उसके कारण कुछ थोड़ा ये थोड़ा रिस्क हो जाता है, तो लेकिन अपना जो दिनचर्या है हम बिता देते।
1: बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपका दिनचर्या बहुत अच्छा है। और राकेश जी आप बताएं, हमारा लेह का रेडियो आपको कैसा लगता है?
0: जी जी जी जी तो मैं कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी लेह का रेडियो बहुत अच्छा लगता है, और हम बहुत अच्छा प्रोग्राम जाता है आपके यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ से पूरे भारत की श्रोता जुड़ते हैं, क्योंकि जब से ये TKS के माध्यम से या न्यूज ऑन AR ऐप के माध्यम से आया, तब से लेकर सुविधा ये होगी पूरे भारत की श्रोता जुड़ जाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी लेह का जो चैनल है पॉपुलर हो रहा है। पहले क्या होता, पहले रेडियो में शायद हमारे यहाँ नहीं तो नहीं पकड़ता,
1: जी बिल्कुल।
0: तो अब ये है कि हम किसी भी माध्यम से सुन सकते, चाहे TKS के माध्यम से, चाहे न्यूज ऑन AR ऐप के माध्यम से। अब तो शायद उम्मीद करता हूँ अब आकाशवाणी ने एक नया ऐप बना है OTT प्लेटफॉर्म, उससे भी आ जाएगा, तो फिर उसके माध्यम से सुन पाएंगे।
1: बहुत ही अच्छा लगा राकेश जी सुनकर कि आपको इतनी सारी जानकारी है।
0: जी, इसकी हम आकाशवाणी से आकाशवाणी के माध्यम से जानकारी कैसे है, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ कि सिर्फ आकाशवाणी सिर्फ सुनना ही नहीं है, आकाशवाणी के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन कौन सा केंद्र है, किस माध्यम से चलता है। नहीं तो मेरे लिए तो कुछ लोग बोलते हैं हिमाचल के श्रोता हमारे, और बोलते हैं कि हम तो वही शिमला के अलावा कहीं कॉल करते हैं। मतलब शिमला तो ठीक है, वो तो हमारा जन्मभूमि है, तो लेकिन ये है कि अपने भारत के किसी भी केंद्र पे अगर कॉल करेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आकाशवाणी में अपने विचार रखने का मौका मिलता, चाहे कोई भी आकाशवाणी केंद्र पर आप ट्यून कर लो।
1: बहुत ही अच्छे विचार हैं राकेश जी आपके, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपने ही स्टेशन के अलावा आप दूसरे स्टेशनों में भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा विचार आप रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी विचार है राकेश जी।
0: जी जी जी जी जी
1: बिल्कुल। राकेश जी गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
0: मुझे एक गाना सुना है, फिल्म का नाम है राजा।
1: जी बिल्कुल।
0: और गाने के बोले हैं आंख मिलाते डर लगता है कहीं इश्क ना हो जाए।
1: जी बिल्कुल राकेश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं राजा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरा नाम है पूरा वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम खंसवेल वगैरह।
0: बिल्कुल पूरन वर्मा जी, हम आपको पहचान गए, कैसे हैं आप?
1: मैं सर बढ़िया हूँ सर। पिछली बार सर रिकॉर्डिंग नहीं बजी थी सर, कुछ कारण हो गया था।
0: हाँ पूरन जी, उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि उस दिन तकनीकी खराबी की वजह से ना ये हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे पूरन जी।
1: तो आप कैसे हो सर, वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो बादल छा रहे और बारिश का मौसम हो रहा है
0: जी। पूरन जी, हमारे यहाँ बारिश धूप बादल तीनों ही आसमान में देखने को मिल रहे हैं, तो मौसम के बारे में मैं कुछ पर्टिकुलर आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमें एक ही दिन में बारिश भी देखने को मिल रही है, धूप भी देखने को मिल रही है और बादल भी छा रहे हैं। और बताएं क्या चल रहा है आपके यहाँ?
1: बस सर बढ़िया है, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, इंतजार कर रहा था कब मेरा कॉल लगे तो लग गया।
0: बिल्कुल पूरन जी, और आप लोगों की ये प्रेम है कि आप अगर कॉल ना भी लगे तो अगली बार फिर से ट्राई करते हैं, और इसी के लिए हम आभारी हैं आपके जी। पूरन जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे पूरन जी?
1: जी सर, फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और गाने के बोले नेपाल की ठंडी हवा, ऐसा कुछ गाना है वो।
0: जी बिल्कुल पूरन सिंह जी, आपके साथ हमें कौन सुन रहा है पूरन जी?
1: जी सबसे पहले आप सुन रहे हैं, मेरा दोस्त है और रमेश प्रजापति भी है, गोल्डी भाई है, बिमल है, अमल है, और जितने कॉलर लाइव सुन रहे हैं तमाम श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना और राकेश।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पूरन जी, आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं घर वाली बाहर वाली फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से सर जी, आपका भाई मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: जी मांगीलाल चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: सर जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से यही कामना करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
0: हम बिल्कुल ठीक है मांगीलाल जी, और आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी बढ़िया हूँ सर जी।
0: क्या चल रहा है, बारिश के आसार है कि नहीं?
1: सर बारिश के आसार 19 तारीख में बहुत भयंकर बारिश हुई थी, और फिर कल भी 24 में भयंकर हो गई, और अब भी संभावना हो रही है, गरजना हो रही है, काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, बहुत सुहावना मौसम हो रहा, और पानी बिल्कुल आने वाला है, घंटा आध घंटा के अंदर पानी बरसने वाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल मांगीलाल जी, और ये तो अच्छी खबर हो गई आपकी खेतों के लिए फिर।
1: सर जी पानी बरस जाएगा, क्या है हम किसान हैं तो फसल बो देंगे रबी की, जो भी हमको बोना है, मक्का बोते हैं, धान लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं, इस तरह की रबी की फसल हम, खरीफ की फसल हम।
0: जी बिल्कुल मांगीलाल जी, आपका नाम हर एक कॉलर, हर एक हमारे जितने भी जो भी कॉल करते हैं उस ग्रुप में आपका नाम आता ही आता है।
1: हाँ सर जी, मित्र हैं वो हमारे, मित्र है, आपस में लेते रहते हैं नाम, वीडियो के माध्यम से मित्र बन चुके हैं सर जी।
0: और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि रेडियो के माध्यम से आप लोगों में इतनी अच्छी और गहरी मित्रता है।
1: हाँ सर जी, मैं अपने मोड़े से बढ़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन भारत के हर राज्य में हमारे मित्र बने हुए हैं।
0: बिल्कुल जी मांगीलाल जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे मांगीलाल जी?
1: सर जी फिल्म।

0: का नाम रहेगा 9211
1: जी।
0: और गाने के बोल है, आँखों में क्या जी पहला बादल
1: जी।
0: ये ना सर जी, हमारे कुछ मित्र हैं, उनको डेडिकेट रहेगा। वो मित्र हैं नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, शेख हैदर खान जी हैं, और हमारे मित्र हैं त्रिपुरा से अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता बहन जी, और कश्मीर से हैं हमारे मित्र अतीब अहमद रहना
1: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल मांगीलाल जी, आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं 9211 फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर,
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी रमेश जी, कैसे हैं आप?
1: स्वस्थ है, मस्त है, गर्मी के आनंद ले रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। काफी दिन हो गया था, सोचा मैंने फोन लगाता हूँ तो 4 बजे से परेशान हो रहे हो लग पाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी यही आपका प्रेम है और यही आपकी शिद्दत है जो आप 4 बजे से फ़ोन लगा रहे हैं और आखिर में अंततः आपका फ़ोन लग ही गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रमेश जी। क्या करते हैं रमेश जी आप?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर हूँ
0: जी। तो आप किस तरह के कपड़े सिलते हैं?
1: पैंट शर्ट कुर्ता पजामा कमीज सफारी
0: जी जी जी
1: और सफारी सूट और ये आता ना सलवार कुर्ता।
0: जी बिल्कुल रमेश जी, तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े सिलते हैं।
1: जी
0: जी बिल्कुल,
1: कपड़े तो एक से बढ़ के एक मिलते हैं, भले अपन पहनेंगे लेकिन बनाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: अच्छा रमेश जी, आप हमारे लद्दाख का रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: मेरे को तो हुआ है 2-3 साल।
0: अच्छा, लद्दाख का हमारा रेडियो सुन के?
1: जी
0: जी। कैसा लगता है आपको हमारा रेडियो?
1: अरे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता सर जी आपका, क्योंकि आप तो इधर हिंदी इतनी बढ़िया बोलते हो आप लोग।
0: जी जी रमेश जी
1: जी, और आपका प्रेम बहुत बढ़िया जो हमको खींच के लाता है। हम मतलब जरूर मतलब कितने सोचे तो भी काम कितने हमारे पास हो इसके बाद भी काम का समय निकाल कर आपके पास फोन लगाते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा रमेश जी ये सुनकर कि आप हमारा रेडियो इतने टाइम से सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे रमेश जी?
1: ये फिल्म है जय श्री शिवराम
0: जी,
1: उसमें गाना है पापा मेरे मैं छोटी से बड़ी हो गई।
0: जी बिल्कुल। अच्छा रमेश जी, जानना चाहेंगे हमारे साथ आपके साथ हमें कौन सुन रहा है रमेश जी?
1: हमारे साथ हमारे जो मित्र है, एक तो लोकेंद्र वर्मा है उज्जैन से
0: जी,
1: धर्मवीर है दिल्ली से, माहिला चंदेल है, भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, रजरा लोजी जी, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, शिवलोहार है विदिशा से, पूनम जी है कानपुर से, और अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, डिमल है असम से, अमल है गोल्डी है, पूनम जी है कानपुर से, अमर सिंह साहू है भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे जी है, और तनुश्री है, अरे बच्ची है हमारी छोटी सी तनुश्री का, उसका आज जन्मदिन है लेकिन कार्यक्रम तो कल आएगा, लेकिन आज ही उसको गिफ्ट कर देते हैं, वहाँ जो उसका जन्मदिन।
0: अरे वाह, आपके बच्ची को हमारी पूरे ऑल इंडिया ले के टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप ही के फरमाइश पर पेश करते हैं इस खूबसूरत से गाने को।
2: पापा

0: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
1: सर मैं गुजरात से बात कर रहा
0: हूँ। जी सर।
1: धीरज जबारी मेरा नाम।
0: जी
1: समय मिलने पर आकाशवाणी देश से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर।
0: जी धीरज जी बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आपसे बात करके। धीरज जी आप क्या करते हैं?
1: सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं धीरज जी।
1: जी सर, और आकाशवाणी से इतना लगाव है कि सुने बिना नहीं रह सकते सर।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप एक प्राइवेट कंपनी में होने के बावजूद भी समय निकालते हैं अपने आकाशवाणी के लिए, और ये आपका प्रेम है।
1: जो अपना सहिता जो भी माध्यम होता है सर, तो
0: जी
1: इसके लिए श्रोता कुछ ना कुछ करता है, अपना कुछ ना कुछ कीमती समय बता के वो सुनता है, और रेडियो सुनने में एक फायदा एक भी है तो अपना कार्य करते जाओ और रेडियो सुनते जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, कार्य के साथ साथ रेडियो सुन सकते हैं आप। धीरज जी कैसा चल रहा है आपका मौसम और कैसा है आपके यहाँ?
1: सर बादल छाए और हम यही चाहते है कि बारिश आ जाए, और भी जाने अपनी आवाज से बारिश को पुकार रहे, लेकिन बारिश आता नहीं, अपनी तरह से काम करता है इंसान को, कुदरत पर निर्भर है वो बात तो पक्की है।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, हम सभी कुदरत पर निर्भर हैं, बट दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ बारिश हो।
1: जी सर, अगर जो कुदरत में जो हमारा जो मौसम है, जो हवामान है, वो जो बदलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही भूमिका है, तो उसको स्वच्छ रखने के लिए, उसको पर्यावरण को हम बचाने के लिए हमारी बहुत अहम भूमिका है अगर हम चाहें तो।
0: बिल्कुल धीरज जी, आपने रेडियो के माध्यम से इतनी अच्छी बात कह दी हमारे सभी लिसनर्स को कि अगर हम चाहें तो हम अपने पर्यावरण को बिगाड़ भी सकते हैं और हम चाहें तो इसे सवार भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, खुद से शुरुआत करनी पड़ती है सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: और हमारी एक छोटी सी पहल कई लोगों को प्रेरणा मिल सकती है और इसके आगे हम दूसरे भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल धीरज जी, आपके बहुत ही अच्छे विचार है धीरज जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: जी सर, वही प्रेरणा हमें आप लोग अनाउंसर और आकाशवाणी के जरिए मिल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रेय देने के लिए।
1: जब लेह में जुड़ते हैं तो हमने मान लो कि हम लेह घूमने के लिए आए, मेरा बच्चा घूमने आया था, लेकिन नसीब होता है सर, सभी के सप्ताह पूरे नहीं होते, लेकिन मेरा बच्चा आया था, मैं अगर जीवित रहा तो लेह के मुलाकात लूंगा जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत है लेह लद्दाख में।
1: जी सर धन्यवाद।
0: जी धीरज जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो सर, मेरे ख्याल से आपके ऐसे नाते फिल्म का गाना है अमृता जी की आवाज में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश रखी है आपने धीरज जी, आपके साथ
1: एक एक गीत सर तीन आवाजों ने गाया है मेरे ख्याल।
0: जी जी बिल्कुल धीरज जी,
1: और अमृता की आवाज में वो तो सर जरूर पेश करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, हम पूरी कोशिश करेंगे।
1: और नाम थोड़ा 4-5 ले सकूं सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारे आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप है सर, इस पे हमारे गौतम रायकोरे जी, तुकाराम दादर जी है, गुणवंत कबीर, दुखेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सावंत, बहुत भारत के सभी राज्यों के श्रोता जुड़ते हैं इसमें, और हमें लेकी फोन की अपडेट भी हमारे श्रोता देते सर। हमें अच्छा लगता है कि एक आकाशवाणी ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से भारत के कई ऐसे श्रोता ग्रुप है, तो इसमें हमें भारत की आकाशवाणी केंद्रों की जानकारी मिल जाती है।
0: बिल्कुल धीरज जी, आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि हम देश के कोने कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं।
1: जी सर, और हमने 90 साल की जो प्रसारण यात्रा का जो हमने आनंद लिया और अभी भी ले रहे, तो वो तो ये आकाशवाणी ही कर सकती है सर। 90 साल कर श्रोताओं को मनोरंजन, ज्ञान, पिरोना कोई आम

0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसी वजह से हमें लगता है कि आकाशवाणी अब एक परिवार बन चुका है सबके लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं कहीं भी अगर लिखता हूँ सर, तो मैं आकाशवाणी ले परिवार, टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार करके ही लिखता हूँ सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे विचार है धीरज जी आपके, और आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं ये खूबसूरत सा गाना। तो इस तरह से,
1: बहुत बात की, मैंने माफी चाहता हूँ।
0: अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके धीरज जी, धन्यवाद।

तो इसी के साथ वक्त हो चला है आप सब से अलविदा कहने का और मेरे स्टूडियो से जाने का, लेकिन सुनते रहिएगा ऑल इंडिया रेडियो ले का स्टेशन और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं और अपनी गानों की फरमाइशें करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोन उठाकर नंबर डायल करना पड़ेगा 01982252064। जी हाँ, 01982252064। और हर गुरुवार आप हमें शाम 4 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं और अपनी गानों की फरमाइशें कर सकते हैं। तो सुनते रहिएगा ऑल इंडिया रेडियो ले। मैं दिलिक्स लूंगा इजाजत। नमस्कार, झूले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोग

0: और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th APEC-level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: The Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945 to simplify the procedure for obtaining permission for import of drugs for examination, test or analysis. The ministry said that the amendment introduces an acknowledgement-based system for import of all drugs in small quantities for analytical and non-clinical testing purposes. The simplified procedure shall not be applicable to certain drugs belonging to the categories of sex hormones, cytotoxic drugs and beta-lactam drugs. The UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Teeth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations emerged of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Teeth Kshetra Trust. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced Operation Amistad, under which 2 Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent assistance to support post-earthquake relief efforts. Amistad means friendship in Spanish. In a social media post, Dr. Jaishankar said, the assistance contains an Indian Army field hospital unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical equipment, including 2 Bhishma cubes. He stated that India is committed to support the government and people of Venezuela in this difficult time. The External Affairs Minister today interacted with a group of journalists from various European countries in New Delhi. The minister spoke to them about the profound transformations underway in India, the current state of flux the world is in, and the growing convergences between India and Europe.

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहब्बतें फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

आइए अब सुनते हैं धड़कन फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप कभी खुशी कभी गम फिल्म से गीत सुन रहे थे। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में गीतकार अनिल पांडे और संगीतकार संदेश शंदलिया। आइए अब सुनते हैं कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म से ये गीत, कुमार सानू की आवाज़ में, गीतकार सुधाकर शर्मा और संगीतकार सुरेश ललवानी।

अभी आप मिशन कश्मीर फिल्म से गीत सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार समीर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

श्रीनगर है खबरों के साथ में मुसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। आशुराई मुहर्रम के सिलसिले में वादी भर में आजादारी की जुलूस बरामद। जुलूस आजम में लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला की शिरकत। शहदाए करबला को किया खराज अकीदत पेश। वजीर आला की बिहार कानून साज असेंबली के स्पीकर और हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम के साथ मुलाकात। बाहमी मफाद के मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। और मनुष्यात मुखालिफ बैनुल अक्वामी दिन आज। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने मनुष्यात के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर दिया जोर। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज आशुराई मुहर्रम है, इस सिलसिले में वादी खास तौर से शिया आबादी वाले इलाकों में आजादारी और जुलजना के जुलूसों का इनेकाद जारी है।

0: सरकार ने पासपोर्ट की इजराई के लिए दरख्वास्त की फीस में इजाफा किया है। वजारत खारजा की एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट की इजराई की फीस अब 5,000 रुपए होगी, जबकि मामूल के तहत इजरा किए जाने वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपए होगी। फीस की नई शर्हों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मर्दों की हॉकी में आज शाम लंदन में ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में FIH प्रो लीग मैच में भारत का मुकाबला देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:20 पर शुरू होगा। इससे पहले इस हफ्ते के शुरू में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी थी। और अब खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। सामाइन, एक नजर आज की सुर्खियों पर। आशुराए मुहर्रम के सिलसिले में वादी भर में आजादारी के जुलूस बरामद। जुलूस आजा में लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला की शिरकत, शहदाए करबला को किया खराज अकीदत पेश। वजीर आला की बिहार कानून साज असेंबली के स्पीकर और हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम के साथ मुलाकात, वाहमी मफाद के मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। और मनशियात मुखालिफ बैन अल-अक़वामी दिन आज वजीर अजम और वजीर दाखिला ने मनशियात के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर दिया जोर। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आज का तबसिरा लेकर मैं सईद मुबशिर रफाई। ये जम्मू कश्मीर की देही मईशत में एक बड़ा और तारीखी कदम है, जहां हुकूमत ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MGNREGA को खत्म करके इसकी जगह 1 जुलाई 2026 से VBGRAMJI स्कीम नाफिज करने का एक जामिया और दूरदर्श फैसला किया है। इस स्कीम का गहराई से जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि यह महज एक नाम की तब्दीली नहीं, बल्कि देही तरक्की के ढांचे में एक इनकलाबी इस्लाहात की हैसियत रखती है, जिसका बुनियादी मकसद रोजगार के तहफ्फुज के साथ साथ देही बुनियादी ढांचे को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करना है। इस नई पॉलिसी का सबसे नुमाया और मुस्बत पहलू सालाना जमानती रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है, जिससे देही खानदानों की आमदनी में बरह रास्त 25% का इजाफा मुमकिन हो सकेगा। जम्मू कश्मीर जैसे जुग्राफियाई और मौसमियाती तौर पर सख्त खत्ते के लिए, जहां सर्दियों के महीनों में निजी शोबे में मजदूरी के मौके न होने के बराबर रह जाते हैं, ये इजाफी 25 दिन गरीब तरीन तबकात के लिए एक नागुजीर माशी तहफ्फुज फराहम करेंगे, जबकि 15 दिनों के अंदर काम की फराहमी में नाकामी पर बेरोजगारी अलाउंस का कानून मजदूरों के हकूक को कानूनी तहफ्फुज देता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी इसका हकीकत पसंदाना और ज़राअत दोस्त डिजाइन है, जो रिवायती मनरेगा की एक बड़ी खामी को दूर करता है। माजी में अक्सर देखा गया कि सरकारी कामों की वजह से फसलों की बुआई और कटाई के दौरान देही इलाकों में जरई मजदूरों की शदीद किल्लत पैदा हो जाती थी, जिससे न सिर्फ किसान मुतासिर होते थे बल्कि जरई पैदावार को भी नुकसान पहुँचता था। ताहम अब इस नई स्कीम के तहत अहम जरई सीजन के दौरान पब्लिक वर्क्स में 60 दिन का लाजमी वक्फा रखकर एक बेहतरीन तवाजुन कायम किया गया है, जिससे निजी काश्तकारी और सरकारी रोजगार दोनों मुतवाजी तौर पर चल सकेंगे। स्कीम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इसके इंतजामी और तकनीकी ढांचे को मुकम्मल तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिसमें फर्जी हाजिरी और फंड्स की खुर्द बुर्द जैसे रिवायती चैलेंजेस का खात्मा करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक, चेहरे से शनाख्त और जियो फेंसिंग जैसी खसूसियात शामिल की गई है, ताकि काम की जगह की बराह रास्त निगरानी मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ PM गति शक्ति और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल से अब आर्जी कामों के बजाय पानी की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की सलाहियत और मजबूत देही बुनियादी ढांचे जैसे 4 बुनियादी तरजीह शोबों में पायदार असासे तैयार किए जाएंगे, जो तवील मुद्दत तक मकामी मईशत को फायदा पहुंचाएंगे। देही समाज के पसमानदा तबकात, खासतौर पर खवातीन के लिए 33% कोटा की लाजमी शर्त, जिस्मानी तौर खास अफराद, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं और इंतहाई कमजोर कबाइल के लिए मखसूस डिजिटल कार्ड्स का इजरा इस बात की जमानत है कि तरक्की का सफर सबके लिए यकसां और जामे होगा। अगरचे दूर दराज और पहाड़ी देहात में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और मकामी पंचायत अमले की जदीद डिजिटल टूल से ना वाकफियत

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी,

0: पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की